नमस्कार, 4EB ग्लोबल के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। कुछ फेमस गीतों से भरकर आज का प्रसारण मैं आपके लिए लाई हूं। चलिए सबसे पहले यह गीत सुनते हैं। यह है धुरंधर फिल्म का बहुत ही फेमस गीत, जिसे गाया है मधुबंती भागची और जैस्मिन सैंडलर्स ने। इस गीत के कोरियोग्राफर हैं विजय गांगुली और संगीत है शाश्वत सचदेव का।

अगला गीत सुनिए फिल्म स्त्री 2 का, जिसे गाया है मधुबंती बागची ने और दिव्या कुमार ने। उनका साथ दिया है सचिन जिगर ने। इसके संगीतकार है सचिन जिगर। तमन्ना भाटिया द्वारा डांस और इसके डांस मूव्स इतने पॉपुलर हुए कि हर कोई रील्स बनाकर उन स्टेप्स को कर रहा था। इसके भी कोरियोग्राफर है विजय गांगुली।

आप सुन रहे हैं 4EB ग्लोबल का साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, सीमा श्री कुमार के साथ। अब सुनते हैं फिल्म बैड न्यूज का यह फेमस गीत, जिसमें विकी कौशल ने बहुत बढ़िया डांस किया है। इस गीत को गाया है करण ओजला ने। इस गीत के कोरियोग्राफर है बॉस्को सीजर।

अगला गीत है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। यह भी काफी फेमस गीत है जिस पर सैकड़ों रील्स बनाए गए हैं। इसे गाया है अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी ने।

चलिए अब सुनते हैं फिल्म जरा हटके जरा बचके से यह गीत। इसे गाया है वरुण जैन, सचिन जिगर, शहद फरीदी, अल्तमरा फरीदी ने, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और सचिन जिगर का संगीत।

अब सुनते हैं एक पुराना आइटम नंबर सॉन्ग नए रंग में। यह है फिल्म टोटल धमाल से। इसे गाया है ज्योतिका टंगरी, शान और शुभ्रो गांगुली ने। इस गीत में सोनाक्षी सिन्हा ने नृत्य किया है। कोरियोग्राफर हैं आदिल शेख।

अब सुनते हैं तम्मा फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है रश्मित कौर और जिगर सरैया ने, और इस गाने में है नोरा फतेही, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना।

आप सुन रहे हैं 4EB ग्लोबल का साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। चलिए अब सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन का यह मशहूर गीत सुनते हैं फिल्म राब्ता से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर और मीट ब्रोस ने। अगर सुशांत हमारे बीच अभी भी होते तो न जाने कितने हिट फिल्म्स और सॉन्ग्स हमें दे चुके होते, है ना।

चलिए अब सुनते हैं एक और फेमस गीत फिल्म जग्गा जासूस से। इसे गाया है अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा ने। इसका संगीत है प्रीतम का और बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के। इस गीत में रणबीर कपूर की कोरियोग्राफी की है विजय गांगुली ने।

अब सुनते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से यह गीत। इसकी भी कोरियोग्राफी रील मेकर्स में बहुत फेमस हुई थी। इस गीत को गाया है राघव और असीस कौर ने। इस गीत में शाहिद कपूर और कृति सेनन के लिए कोरियोग्राफी की है शेख जानी बाशा ने।

अगला गीत है फिल्म मेड इन चाइना से, जिसे गाया है नेहा कक्कर और दर्शन रावल ने। यह मौनी रॉय और राजकुमार राव पर फिल्माया गया है।

चलिए आखिर में सुनते हैं फिल्म आजाद का यह फेमस गीत, और इसी गीत के साथ मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार आपसे विदा लेना चाहूंगी। जल्द ही फिर मिलेंगे। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।